नमस्कार है ताहे हमारा, जमनकार सब जगत बनायो, देवदय जशन अपजायो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सल पर जा जने आप सवारी, सेवकन गो सेवकों सो दियो, सतरन गो परम बद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पिशानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सब पर कृपा दृष कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पिशान, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ के ही जान, जाबुद कर करा करतारा, पर जा तर तब दे अपारा, जाबा कर कर तो कब हूँ, तो मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बन से सब तारे, आप अपने बोझो चारे, तुम सभी तेरत निरालम जान, बेहे तेरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नीलनाद संभ, ताका मूढ़ चात पेदा, जाको पे न पावत बेदा, ताको कृपान महानत, महामूढ़ कर पे न जात, महादेव को कह सदाश्य, निरंकार का चिन्ह न भे, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, के बेसा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कहीं भूपा, अंडा जेर से तजकीनी, उत्पोष खान बहोर राच दीनी, कहूँ भूरा जाऊँ बैठा, कहूँ सिर प्यो शंकर कैठा, सरी से दिखाए चंभव, आद जगा श्रू से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो, दो जते उठो तो पाता, सगन मलेश करो रणगाता, जया तू सब सरनी परे, तिनके दुष्ट दो तो है मरे, पुरुष जन पा परे त्यार है, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट हरी टरे तद काला, कृपा दृतन जाए नहर हो, ताके ताप तरंग में हर हो, रेत सेद कर्मो सब होई, दोष ऐसे सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल वहांते ताए उबारा, जिन नर नाम त्यार हो कहा, दार दो दो तेरा, खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप आदे लो अबारी, सर्व ठोर मोहो सहाई, दोष्ट दो ते लो बचाई, सवैया पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को आ तरे नहीं आने, राम रीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न माने, सिमरत शास्त्र बेसब है, बहुपेद के हम एक ना जाने, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ये बखाने, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तवारो द्वार, बाहें गए की लाज अस, गोबिंदास त्वार। राम कली महला तीजा, आनंद क्यों ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइया, रारतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दो ता गावो हरी केरा, मांजनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे, दुख सा विसारना,
अंगीकार हो करे तेरा।

सच है सब जो सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पासा नानक सच ते आए न सच जो मर जम्मे सो कच निकच महला पहला।

विस्मादृ विस्मादृन विस्मादनगे फ्रेजंत विस्माद पौण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, कत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्द शब्दं जेक

0: का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना पर तेरे आए पर तन रूप कन्नी सूतक कन पहला तबारी खाए नानक हंसा आदमी। बदे जम पर जाय महला पहला
1: सबो सूतक पर मैं दूजे लगे जा।

उच्चरें बढ़ गइये दोहचारण रसना राम, प्रभ भगत वशल ना सेव ही काया काक ग्रसना राम। भ्रम मोही दुख न जानई, कोट जोनी बसना राम, नानक बिन हर अवर जे चाहना।

ईत उतना ढोलिए हर सेवा जागन राम, नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागी अमृत वेले के सच्चे दुआना दाजरिया भरिया ने रबी बाणी आसा की वार दे कीर्तन गुरु करके रागी जत्थे ने आप जी नूं सरवण कराए। अरदास हुक्मनामा होया है, समा है हुक्मनामा साहब दी विचार दा। इहदे नाल ही बेनती है भी कल नूं शुक्रवार नूं दो परिवारां वल्लों, नगर निवासियां वल्लों, नगर पौधड़ा दी संगत वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी रब्बी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए जा रहे ने। सो आप समूह संगतां नूं परिवारां वल्लों, नगर निवासियां, इलाका निवासियां वल्लों सद्दा पत्र है जी। आप जी ने हाजरियां भरनियां, गुरु घर विखे सेवावां करनियां, तिन्ने दिन सतगुरु की अमृतमई बाणी के प्रवाह चलणगे जी। इहदे नाल ही गुरु अर्जन साहब जी का शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है वह ऐतवार को सतगुरु गुरु अर्जन साहब की शहादत को चेता किया जाएगा जी। ऐतवार को जिहड़े विशेष दीवान ने वह गुरु अर्जन साहब की शहादत के संबंध में होणगे। सवाब संगत ने पहुँच के हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने। आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

0: सर्ब कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दा तुदिया गै बिनवता।
1: सतगुरु जी कृपा करन उस परमात्मा की अमृतमई बाणी आप सारे ने मिल बैठ के गायन सरवण की। समा होया गुरमत विचारां दा सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। भाई गुर शरण सिंह जी तिना पासों कुछ समा गुरमत सांझ करके जीवन दियां घड़ियां नूं सफला बनाउण दा जतन करिए जी। होईआं भुल्लां दी खिमा लवाओ, हाजरी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जुगो जुग टल, चवर शतर तख्त दे मालक, शब्द गुरु बाणी के बोहे थमरत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी बख्शिश कीती है आप सब। रब्बी बाणी दे कीर्तन मेरे तो पहला गुरु घर के रागी सिंघां पासों सरवण कर रहे सी, तो समा है लड़ीवार चल रही गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी दी कथा विचार दा। सो विचारां नूं रमण तो पहला दर घर दी मर्यादा नूं मुख रखदिआं फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द गौड़ी राग विच कबीर साहब दी रसना तो उच्चारण किया होया गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 328 ते 29 दे उत्ते सुभायमान है। इस शब्द विच कबीर साहब ने उन्हां जोगियां जां धार्मिक बंदियां दी गल कीती है जिन्हां ने धर्म दे नां दे उत्ते अपने जीवन नूं होर गर्क कर लिया। सो हुंदा की सी वी जिहड़े जोगी लोग सन इह समाधियां लाउंदे सी ते समाधि लाउण दे लई इन्हां ने नशे दे विच मदहोश हो जाणा, शराब पी लैणी। अज वी तुसीं वेख्या होवेगा वी आम जिन्हां नूं कई वार आपां बाबे कह दिंदे आ ते ओह नशा

पिंजरे चो निकलने का यत्न करे तो तुसी खंजर दे वार ओदे उत्ते कर देने खत्म कर देना। सतसंग जी ए बाबा बंदा सिंह बहादुर का इशारा वहीर हुण ओदे नाल ओदा चार कु साल का बच्चा अजय सिंह भी मौजूद सी, ओदा परिवार सारा गिरफ्तार करके ते सारे जड़े मुखी सिंह सन उन्हां नू गिरफ्तार करके दिल्ली लै आंदा गया। ते गुरु के प्यार वाले हुण इन्हां ते तसीहां दा दौर शुरू हुंदा। बहुत सारे रस्ते चों मैं बेनती कीती सी भई जिद्दण इन्हां नू गुरदास नंगल दी गढ़ी दे विचों गिरफ्तार कीता सी तां गिणती बहुत थोड़ी सी, ते जकरिया खां यही सोचदा भी जे इन्ने 200-300 मैं लैके चले गया ते उत्थे फर्क सीर दे कोलों लानतां पैणगियां भी इन्ना चिर गढ़ी नू घेरा पाई रखिया तां 200-300 मेरे सामने बस इन्या ने तुहाडा मुकाबला कीता, इन्ना चिर जंग दे विच तुसी पंजाब दे विच आही कुछ करते रहे। सो गुरु प्यारिओ इन्हें फर्क सीर नू जितण दा करके दिखाउण दा करके भी उत्थे सिंघां दी गिणती कोई थोड़ी नहीं सी, पिंडां विच वसदे सिंघां दे सिर वढ के गड्डियां ते लद लै गए, गिणती वधाई गई, कतल करके गिणती वधाई गई, जिउंदे फड़ के गिणती वधाई गई है। ते सतसंग जी हुण इन्हां दे उत्ते तसीहां दा दौर पहलां इन्हां नू लालच दित्ते गए कि लालच वस कोई सिख अपना धर्म त्यागेगा, पर इतिहास के किसी वर्के के उत्ते इदां दा नहीं साढ़े सामने नजर आया कि उन्हां 740 दे विचों एक जाने ने भी किते धर्म छड्डिया होवे। किदां दे ओ गुरु के सिख सी प्यारिओ, अज धर्म तब्दीली की गल कर रहे हैं ना असी, सानू डर बनिया होया भी पंजाब विच धर्म तब्दील हो रहा, रौली पा रहे हैं, साढ़े धर्म नू खतरा, साढ़ा धर्म दे उत्ते हमले हो के दूसरे धर्मां वाले साढ़े सिखां नू अपने धर्म दे विच लई आ रहे ने। गुरु प्यारिओ हुण तां तलवार ही किसी ने सिर ते नहीं रखी साढ़े, हुण ते सानू कोई कतल नहीं कर रहा इदां जिदां मुगलां दे टाइम कर रहा सी वी तुहाडा धर्म तब्दील कीता जाएगा, अपने आप नहीं करोगे ते तुहानू कतल कर दिते जाएगा, और उदों लालच भी दिते जांदे सी, पर उदों लालचां वस आ के एक भी सिंघ ने एक भी गुरु के सिख ने अपना धर्म तब्दील नहीं कीता। ते अज जदों पंजाब वल झाती मारदे आ ना, नित खबर आ रहीआं कि इन्ने परिवारां ने इन्ने सिख परिवारां ने असल अपने ईसाई धर्म नूं कबूल लिया। मैं ते बेनती करिया कर हाँ उन्हां नूं लालच दित्ते जांदे ने, कदी समां सी असी लालचां नूं ठुकराया, साडे बजुर्गां ने लालचां नूं ठुकराया, साडे 7 ते 9 साल दे बच्चिआं ने लालचां नूं जुत्ती दी नोक दे नाल ठुकराया। पर गुरु प्यारिओ अज कोई दूजे धर्म वाला उठे ते सरदारां नूं वर्ग ला के ते बच्चे जी असी कॉन्वेंट स्कूलों के पढ़ा लाँगे बस इन्ने कते डोल जाने, इन्ने कते मर जाने, तुहाडे न्याणियां नूं कॉन्वेंट स्कूलों के फ्री दे विच पढ़ा दांगे, इन्ने कते सिख गर्क जांदा। ते गुरु प्यारे उह सिखां दीआं उहनां दीआं दास्तानां जिन्हां दे सामने माड़े मोटे लालच नहीं बेअंत जगीरां दे लालच दित्ते जांदे सी, पिंडां दे पिंड जगीरां दे देण वास्ते उस वेले दी हकूमत तैयार हुंदी सी, इत्थों तक कि आख दित्ता जांदा सी तुहानूं असलाम दे पीर बना दित्ता जाएगा, वड्डे वड्डे शाहू घराणियां दीआं धीआं दे नाल तुहाडे रिश्ते कर दित्ते जाणगे। गुरु प्यारिओ उदों साडे धर्म चो कोई डोलिया नहीं सी। ते सतसंग जी हुण जिथे तुहाडे न्याणे असी फ्री स्कूलां दे विच कॉन्वेंट स्कूलां च पढ़ावांगे, और जे तुसीं बीमार हो जाने आ ते तुहानूं असाईयां दे हस्पतालां दे विच फ्री दा इलाज दित्ता जाऊ, इत्थे की गर्क जाने असीं भी फ्री दा इलाज मिल गया, फ्री दी न्याणियां नूं पढ़ाई मिल गई ते चलो ठीक है, धर्म दी कीड़ी गल आ, धर्म बदल दिंदे। गुरु प्यारिओ जिन्हां बाबिआं दीआं बातां पाउंदे आ ना उह सिर वढवा लैंदे सी, अपने धर्म नहीं सी बदल। इक गल होर, इह जिहड़े सज्जण पंजाब विच धर्म तब्दील कर रहे आ ना, मैं कहिंदा हुंदा इन्हां दा बड़ा फिक्र ना करिओ, क्यों? क्योंकि इह लालची लोक ने, लालची इन्हां नूं लालच दे के जे अज दूजे धर्म वाले अपने धर्म विच लिया सकदे ते कल नूं आपां वी इहनूं चार छिलणां दा लालच दे के आपां वी लिया, इन्हां लोकां दा कोई धर्म नहीं हुंदा, इन्हां दा कोई दीन नहीं हुंदा, जिहड़े मिंट मिंट ते अपना धर्म बदल जांदे ने। ते अज उह

ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰਨਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਨ ਮਨ ਕਾਨੀ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਪੁਰਾਨੀ, ਰਹਾਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ, ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਣ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਹਿ ਨਿਸਤਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੋ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਗਈ ਵਿਆਦ ਉਭਰੇ ਜਨ ਮੀਤ, ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਈ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ, ਰਹਾਉ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ, ਸਾ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਹੋ ਮਸਤਕ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨੇਤ, ਧਨ ਓਏ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਲਈਐ ਰਸਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸ ਕਹੀਐ ਰਹਾਉ, ਤਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਨਿਰਵਾਨ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਮਸਲਤ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਖੇ ਸਾਰ ਸੁਮਾਲ, ਐਸਾ ਰਾਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ, ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਰਹਾਉ ਆਗੇ ਆਪ ਇਹੋ ਥਾਨ, ਵਸ ਜਾ ਕੈ ਆਠ ਪੈਰ ਮਨ ਹਰਿ ਕਉ ਜਾਪੈ, ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਾਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਨ, ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਪ੍ਰਿਤਪਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਮਾਲ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਮ ਰੱਬ ਤੋ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ, ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਸਥਿਰ ਸੁਹਾਗ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ, ਗਰਦ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੀ ਪੇਟ, ਬਿਨ ਕਰ ਤੂਤੀ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ, ਰਹਾਉ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲੇਵੈ ਹੱਥ ਦਾਨਾ, ਬੇਦ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਜੀਆਂ ਕਹੋ ਤਨਾ ਸੰਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਿਰ ਕਰਵੇ ਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਰਹਾਉ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਵਸਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਤੇ ਭਾਏ ਨਾ ਜਲੈ, ਹਰ ਸੰਗਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਲੈ, ਹਰ ਸੰਗਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਜਲਾ, ਹਰ ਸੰਗਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸਪੈ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਏ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ, ਰਹਾਉ ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੀ ਮਿਟੈ ਸਭ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਸੂ ਸੋ ਰਚੈ ਜਿਸ ਸਾਧਕਾ ਮੰਤਾ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੀ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜ ਘਰ ਵਸੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਭਰਮ ਭਉ ਨਸੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਗਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਭਏ ਆਨੰਦ, ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸਲ ਘਰ ਆਏ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਈ ਬਲਾਏ,
रहाओ नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श तानो मस्तक चरण कमल ही परस गोविंद की टहलो सफल एहे काया। संतम प्रसाद परम पद पाया जन की नी आप सहाय सुख पाया लागू दासन पाई आपके अतः यह पे पय कृपा निधान की सरणी पय। जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन काहा को जाया अस्त्र पय वसे सुख यसन गुर प्रसाद नानक सुख वसन गौड़ी मोहल्ला पंजवा। कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल। पाप मिटे साधु शरण दयाल रहाऊं बहुत उर्द तप साधन साधे अनेक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नामो रसन अराधे सिमरत शास्त्र भेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपत प्रभ स्यो मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे नाम जपत नाम हृदय विचारे नानक को प्रभ कृपा तारे गौड़ी मोहल्ला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुर गोविंद पार ब्रह्म पूरा अंतिसे अराध मेरा मन तीरा रहाओ। आनंदन जपो गुरु गुर नाम ताते सिद्ध भय सगल काम दर्शन देख शीतल मन भय जन्म जन्म के केल बिक गए कहो नानक कहाँ पै पाई अपने सेव की आप पैज रखाई गौड़ी मोहल्ला पंजवा। अपने सेवक को आप सहाई नित प्रित पारे बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरे सब कोई कर्ण का रावण पूर्ण सब सोए रहाओ। अब मनो वस्य करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपय अपने जन रखे जन्म जन्म के किल विकलते कहनो जाए प्रभ की बड़ियाई नानक दास सदा शरणाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा धोप दे कुंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूर्ण पाई ताते वृथा न बे अपंकाई रहाओ। जो जो चित्त वैदास हर माई सो सो करता आप कराई निंदे की प्रभ पतंग गोबाई नानक हर गुण निरभउ गाई गौड़ी महला पंजवा। पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लेहो अंगुरिया रहाओ। श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रट तो पिंगुरिया। दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता बहतरिया चरण कमल हृदय गह नानक भय सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी वैरागण महला पंजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। दया गुसाई मित लाम तू संग हमारे बास जीव रहाओ तो जर बिन करी ना जीव ना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभु गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला कबन विधि विचार शरण सुमाई दास हित ऊची अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध महान। शरण सुमाई दास तुच अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सुप्रसन्न भय केसवा से जन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राणे आधार सा संग नानक भजे बिक तरिया संसार। गौड़ी वैरागण रहोय के छंत के कर महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
हाय कोई राम प्यारो गावे सर्व कल्याण सुख सच पावे रहो बन बन खोज तो फिरत वैरागी बिरले काहू एक लिब लागी जिन हर पाया से बड़ भागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे जोगी जति सिद्ध हर आहे जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहै ताकी शरण जिन विसरत नाही बड़ भागी हर संत मिलाही जन्म मरण ते मूले नाही कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे बिनो सुनो प्रभु चौपारे नानक मंगत नाम आधारे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाउ रूप हीन बुद्ध बल हीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहे न दर्द न जोबन माती मोहे नाथ की करहो सो माई खोजत खोजत भई बैरागन प्रभ दर्शन को हौ फिर तू ती साई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक सा संग मेरी जलन बुझाई गौड़ी मोहल्ला पंजवा प्रभ मिलने को प्रीत मन लागी पाए लागो मोहिं करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अरपो धन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे बैरागी पूर्व अंकर्म अंकर जा प्रगटे भेट्यो पुरख रसक वैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निक सिरे पंखी सिमर हर पंख मिल साधु शरण गहुम पूर्ण राम रतन हीरे संग राख रहाओ ब्रह्म की कोई तृष्णा रस पंकज अत तीक्षण मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहो निवास कर कृपा गोविंदम प्रभुम प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास कर गह लियो नानक के स्वामी जी ओ पिंड सब तुमरी रास गौड़ी मोहल्ला पंजवा हर पेखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चित बो दिन रहनी है कोई संत मैलावे निरा रहाओ सेवा करो दास दसन के अनेक भांत तिस करो नेहोरा तुला तारुं तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबोही थोरा संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को यात बहोराय आनंद सुख भेट हर नानक जन्म कृतार्थ सफल सुवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिलै गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दी बोताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया बिच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया इहो परमो कहो क्यों जाई एका संगत एकत गृहस्थी मिल बात न करते पाई एक वस्तु बिनु पंच दुहेले ओ वस्ति अगोचर ठाई जिसका गृहु तिन दिया ताला कुंजी अंगुर सौ पाई अनेको पाप करे नहीं पावे बिन सतगुरु सरणाई जिनके वंदन काटे सतगुरु तिन साध संगत लिव लाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद न पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज पया ब्रह्म खिन में नाठा मिल ज्योति ज्योत सुमाई रहाउ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बिठल सतगुरु मुझे बतायो रहाउ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे इहो बिश्वास होय आयो कह पहें करो अरदास बेनती जाओ सुन तो है रघुरायूं लहे ऊं सहसा बंधन गुर तोरे तां सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख का दिखायो
खांडो ब्रह्मांडो का एको ठाणा गुरु परदा खोल दिखायो नाओ निद नाम दान एक ठाई तो बार इकट्ठे जायो एक अनेक अनेक पात साजी बहु प्रकार रचायो। कहु नानक परम गोरे कोई है इव तत्ते तत् मलायो गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हाउ दे कटै दिन सरै नारे मन गुरमिल काज सुबारे रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत हल की वेलाई हा खाट चलो हर लाहा गै वस सुनु सोहेला। इहो संसार विकार संसे मैं त्रयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जाको ऐ सोई बिहाजो अर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोहर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रा मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पांच बेखादी एक गरीबा राखो रखन हारे। खेद कर है अरु बहुत संताप है आयो सरन तुहारी कर कर हारियो निक बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनो ताकि ओटा साध संग मिट जाही कारण कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संति मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द को माया। जीत ले ओए महावेखदी सहज सुहेली बाणी कहो नानक को मन पया परगा साम पाया पद निर्वाणी। गौड़ी मोहल्ला पंजवा हो अविनाशी राया निरपउ संग तुम्हारे वास्ते एहो डरन कहा ते आया रहाओ। एक महल तू ओहे अपारो एक महल न मानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो। एक महल तू पंडित बक्ता एक महल खल होता एक महल तू सब किच ग्रह हज। एक महल कछू न लेता काठ की पुत्री कहाँ करे बपरी कला बनहारो जाने। जैसा भेख करावे बाजीगर ओह तैसो ही साज आने अनेक कोठड़ी बहुत भात करिया आप हुआर कुबारा। जैसे महल राखे तैसे रहना क्या एहो करे बिचारा। जिन किच किया सोई जाने जिन एह सब वेद साजी। कहो नानक परम्पर स्वामी कीमत अपनी काजी। गौड़ी महला पंजवां छोड़ छोड़ रे विख्या के रसुआ उर्ज रहो रे बाबरंगा ब्रजो के रिखे हरे आयो पशुआ रहाओ। जो जाने तू अपने आ काजे सो संग न चल तेरे तसुआ नांगो आयो नाग सुदासी फेरों फिरियो आर काल ग्रसुओ। पेख पेख रे कुसंब की लीला राच माच तिन हु लहु हसुआ। सीजशो डोर दिन से अर रैनी जी को काज न कीनो कछुआ। करत करत इब ही निम्बिर तन हार्यों उकते तन खी नसुआ। जो मोह्यो उन मोहनी बाला उसते कटे नाही रुच चशुआ। जग ऐसा मोहे गुरे दिखायो तो सरन परयो ताज गर्वसुआ। मार्ग प्रभु को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी मोहल्ला पंजवा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण अदारा राहो। अंतर की वैद तुम ही जानी तुम ही सजन सुहेले। सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकरे अगम्य तोले। वरना साको तुमरे रंगा गुण दान सुख दाते अगम्य गोचर। प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते परम पौ काट किए ने केवल जब ते हम मैं मारी। जन्म मरण को चूको सहसा सात संगत दरसारी। चरणों पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया। जह प्रसाद एहो भउ जल तरिया जग नानक प्रै संग मिरिया। गौड़ी मोहल्ला पंजवा।
तुझ बिन कबन रिझावै तोही। तेरो रूप सगल देखो मोही रहाओ, सुरगुम पयाल मृत भूमंडल सर्व गो मानो एकै ओही। शिव शिव करत सगल कर जोरै, सर्व मया ठाकर तेरी दोही। पत तो पावन ठाकर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीत लोही। ज्ञान त्यान नानक बड़े आई, संत तेरे सो गाल गलोही। गौड़ी महला पंजवा। मिलो मेरे जिया प्रभ किया, तुम्हारा थिया रहो अनेक जन्म। बो जूनी भ्रमया बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मानक दे पाईया। देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस भाणा, अबुर ना किन्ही कीता। तुमरे भाणे भरम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। बिनो सुनहु तुम प्राण पत, प्यारे कृपा ने दयाला। राख लिहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रत पाला। जिसनु तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत के पाछें कर कृपा। धूर देव संतन की सुख नानक इहो बाछें। गौड़ी महला पंजवा। हाओ ताके बलिहारी जाके, केवल नाम आधारी रहाओ। मैं माता की केतक गणी आए, जन्म पार ब्रह्म रंग राते। सुख सहजे नंद तिन्ना संग, ओने सम सरे वरना दाते। जगत उदारण से आए, सो जो जन दर्श प्यासा। उनकी शरण परै सो तरया, सत्संग पूर्ण आसा। ताके चरण परोता, जीवा जन के संग निहाला। भगतन की रेन होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दिसै, सब किश जुग मैं घाटिया। नाम निदान सद नवतन निर्मल, इहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा। जोग जुगत सुन आयो गुर ते मोको, सतगुरु शब्द बुझायो रहाओ। नाउ खांडो प्रथमी ऐसो तान मह रविया, निमक निमक नमस्कारा। धीकेया गुर की मुंद्रा कानी, दृढ़ो एक निरंकारा। पांचो चेले मिल पै एकत्रा, एक स्कैवस किए। दास बैरागनी आज्ञाकारी, ताब निर्मल जोगी थिए। परम जराय चराय बैभूता, पंथ एक कर पेखिया। सह सुख सो किन्नी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लिखिया। जह पाओ नाही तहां यासन वाध्यो, सिंघी अनहत बानी। तत् विचार ढंडा कर राख्यो, जुगत नाम मन भानी। ऐसा जोगी बड़भागी भेटै, माया के बंधन काटै। सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनहो सगल, ते आले मीता। हारे औखद जाको गुरदिया, ताके निर्मल चीता। रहो अंधकार मिट्यो तह तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा। ब्रह्म की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा। तारी अले भाव जल तारू विखड़ा, बोहित साधु संगा। पूर्ण होई मन की आसा, गुर भेट्यो हर रंगा। नाम खजाना भगती पाया, मन तन तृप्त अगाए। नानक हर जियो ताको देवै, जाको हुकम मनाई। गौड़ी महला पंजवा। दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी। अंधकूप मह हाथ तेरा को, कछु से अनप उक्त ना मोरी। रहाओ कारण कराबन, सब किश तुम ही तुम समरथ। नाही अन होरी तुमरी गत, मित तुम ही जानी। से सेवक जिन भाग मथोरी, अपने सेवक संग तुम प्रभ राते। ओत पोत भगतन संग जोरी, प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे। जैसे दृष्टि ओह चंद चकोरी, राम संत मह भेद किछ नाही। एक जन कही मह लाख करोरी, जाकै हिय प्रगटम प्रभ हुआ। अनदन कीर्तन रसन हर मोरी।
ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰਿ ਅਤੁਚੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧੂਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸੰਗੋਰੀ ਗੌੜੀ ਮੋਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੁਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ ਨਿਭਾਹਿ ਲਿਓ ਮੋਹ ਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਵਹੁ ਦਾਤੇ ਰਹਾਉ ਤੁਮਰਾ ਮਰਮ ਤੁਮਾਹੀ ਜਾਣਿਆ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨ ਨਾਥ ਦੀਨ ਕੋ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤੇ ਤਰਨ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਤ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਆਪਣੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੋ ਸੰਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਤੇ ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥੇ ਐਸਾ ਨਿਧਾਨ ਦੇਹੋ ਮੋਹ ਕੋ ਹਰ ਜਨ ਚੱਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਕੀਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਪੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭੇਟੇ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧਰਾਪੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਇਓ ਦੇਵ ਮੋਹ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਦੇਵ ਰਹਾਉ ਕਾਟ ਜੀਵਰੀ ਕੀਓ ਦਸਰੋ ਸੰਤਨ ਟਹਿਲਾਇਓ ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਥੀਓ ਪੁਜਾਰੀ ਮੋਕ ਅਚਰਜ ਗੁਰੇ ਦਿਖਾਇਓ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸਵਾਗਾਸ ਸਰਬ ਜਿਆਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆਨ ਭੈ ਠਹਿਰਾਇਓ ਮਾਨ ਆਗਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁਖ ਉਠਾਉ ਗੁਬਾਇਓ ਜਉ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭੈ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ ਸਭ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਦੇਖਾਇਓ ਨਾ ਕਿਛ ਆਵਤ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਵਤ ਸਭ ਖੇਲ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਇਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਇਓ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀਓ ਟਗੇ ਹੀ ਚੈਰੇ ਜਿਨ ਧਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਹਰਿ ਕਾ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚਰੇ ਰਹਾਉ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਅਗਹੋ ਹਰਿ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਸੁਖ ਦੁਖ ਓਹੀ ਧਿਆਈਐ ਰੇ ਕੋਟ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਵਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਰੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਮਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰੇ ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਕਰਤੇ ਪੂਰ ਰਹੋ ਰਤਨਾਗਰ ਰੇ ਜਾਚਕ ਜਾਚੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸੋਈ ਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਨਹੋ ਬਿਸਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਘਟਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟੈ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਹਰ ਸਰਣੀ ਚਲਤੀ ਅਗਨ ਨਵਾਰੀ ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਨਰਕ ਤੇ ਰਾਖੇ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧਤ ਮਨ ਮਹਿਨ ਜਮੀ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਵਿਧਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਉੱਚਾ ਗਮ ਅਪਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ

0: जन्म इहो रत्न मोलक साध संगत जप एक खेना रहाओ सुत संपत बिनंता बिनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैबर गैबर राज रंग ते आग चल्यो है मूड़ नंग चोआ चंदन दे पुलिया सो तन धर संग रुलिया मोहे मोहे जाने दूर है कहो नानक सदा दूर है गौड़ी
1: मोहल्ला
0: महला।
1: पंजवा मन धर तर बेहर नाम नाम नू सागर लहर संसा संसार गुरबोहित पार ग्राम नू रहाओ रहाओ कल कल कंधे आरिया गुर ज्ञान दीप को जियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुणी मतवारू माया सोया गुर भेट भ्रम भौ खोया कहो नानकी एक ते आया कट कट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तू ही एक सेवा थारी गुरे टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया मारे पंच बेखा दिया गुर कृपा ते दल साधया बख्शीस बजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा।

रहौ। माने अभिमान दोष माने, मस्तक डार गुर पाग्यो, संपत सग हरकनावत, दुखा रंग दो ठाकर लाग्यो।

प्रभ सब किछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जानै इन ए रचन रचाया कौ नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाणे ए और मूसे राव वर्त नेम संजम मैं रहता तिनका आढ़ न पाया आगे

राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओहकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेव लगाया जियो।

पंजवा हरे राम राम राम रामा जप पूर्ण होए कमार आओ राम गोबिंद जपिंदिया हुआ मुख पवित हर जस सुनिए हर

मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा कहे गवावाओ रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवाओ गज को त्रास मिट्यो जह स्मृत तुम काहे बिसरावाओ ताज अभिमान मोह माया फोनता भजन राम चित लावाओ नानक कहत मुक्त पंथ एहू गुरमुख होए तुम पावाओ रहा। गौड़ी महला नौवा कोई को माई भूल्यो मन समझावै वेद प्राण साध पग सुनकारे निमखना हर गुण गावै रहाओ।

आचारा दृष्ट भई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई ना देखे दिखो मीत किस सेवो किस देवो चीत।

रखो कैसा, सागर डूगर निर्भौ ऐसा, मुए कौ कौमारे कौन निडरे, कौ कैसा डर कवन।

बहुत चितै विकारे मन भूलो सिर आवै पारे मन मानै ए हारे कंकार मन भूलो माया कर जाए काम बुरुदौ रह ना ठाए हर भज प्राणी रसन रसाए।

नर नह केवल निर्भव नाउ अनाथ है नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जान गुर कै शब्द आप शान है सच शब्द दार निशान है शब्द मरे तिस निज करवासा आवे न जावे चुके आसा।

सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख्या भेवा जह जह देखो तह तह साचा बुझ बिन बुझे झगड़त।

ब्रह्मै गर्भ किया नहीं जानया, वेद की व्यप्त पड़ी पहचानया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गौर मिले तैसे गर्भ निवारे रहो बाल।

मत देवै, दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी, प्राप नारायण गर्भ प्रहारी, आप भुलाए आपे मत देवै, दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उदारी कृपा तारी, भूलो रावण मुग्धा चेत, लूटी लंका शीश समेत, गर्भ दे गया बिन सतगुर हेत, साहस बाहा मद कीट महखासा, हरनाक्ष लीनखु बेदासा, दैत सिंगारी बिन भगत अभ्यासा, जरा संद कालज नुमा संगारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दै सिंगार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संगारे,

हर हंडावो। बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो। राहो कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहली फूल गलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला।

पर पर पुथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी बहु नाटा ज्यों चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृप्तासा गौणी महला पहला हट

तख्त सलाम अद की तृष्णा व्या पैकाम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद हंकार नाही प्रमेला मन दे पावह नाम सहेला दूजे पाए अज्ञान दहला बिन दम के सौदा नहीं आट बिन बुहत सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिस को बहु बहु जे वाट दिखावे तिस को बहु बहु जे शब्द सुनावे तिस को बहु बहु जे मेल मिलावे बहु बहु तिस को जिसका ए जियो।

गाहि, हमें बंधन बंद पवावे। नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया। ब्रह्म कमल पाया न पाया, आग्या नहीं लीनी परम पलाया। जो पज सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ

मिले मन माने। हम पापी निर्गुण कौ गुण करिए है, प्रभ होए दयाल नानक जन तरिए। सुहुल अष्टपदिया ग्वारेरी गौड़ी किया। गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों गाई कौ गोयली राखे कर सारा, इन सपाल राख ले आत्म सुख तारा। इत उतरा

चले तुहारे साथी, सास वाला वे जे आप नानक ताको दुख ना बे आपे। श्लोक हर हर मुखते बोलना मन बुठे सुख होए, नानक सब में रव रया तान तनंतर सोए। पौड़ी हीरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सस देव दुख पंजन गुरु ज्ञान। हो छुटके हो नंद ते हो नाही ते आप, अते दुख जन्म है मरण संत संग परताप। हितकर नाम दड़े दयाला, संत संग होत कृपाला। पूरे कछु न किनू किया, नानक सब कुछ प्रभ ते हुआ। श्लोक देखे कते न छूटिया, किन किन पुलन हार। बख्शन हार बख्शला, नानक पार उतार। पौड़ी लूण हरामी गुनागार, बेगाना अलप मत। जियो पिंड जिन सुख दिए, ताए न जान तत। लाहा माया कारने, दैद से टूंढन जाए। देवन हार दतार प्रभ, निमक न मने बसाए। लालच झूठ बेकार मोह, या संपे मन माहे। लंपर चोर निंदक महा, तिनाहू संग विहाए। तुद पावे ता बख्श लै, खोटे संग करे। नानक पावे पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक खात पीत खेलत हस्त, पर मैं जन्म अनेक। भव जल ते काडो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो, अनक जोन दुख पाए। खेद मिटे साधु मिलत, सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो, खायो अमृत नाम। करी कृपा ठाकर भई, आनंद सुख विश्राम। खेप नबाही बहुत लाभ, कर आए पतवंत। करा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन की आ करे आप, आगे पाशे आप। नानक सो सराई है, जे कड़ कड़ रहा व्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बस, नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैत्र भवन प्रभ तारे, अखर कर कर भेद बिचारे। अखर शस्त्र सिमर पुराना, अखर नाद कथन बखियाना। अखर मुक्त जुगत भय परमा, अखर कर्म किरत सुचितरमा। दृष्ट मान अखर है जेता, नानक प्रार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर जरयो सब संग नूपुर पावती। उस्तत कहन न जाए मुखो तुहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। पौड़ी हे अचुत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश। हे पूरन हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निहंकार, हे निर्गुण सब ठेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, हैपी हो गणहार। हे संता के सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकर हो दास रो, मो मैं निर्गुण गुण नाहि कोए। नानक दीजे नाम दान, राखो हिए परोए। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सोधरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा।
गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ पवित्र करा गुरुदेव आज युग आज युग युग गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन परंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पदत पवित करा गुरुदेव आद युग आद युग युग गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इस लोक आद अंत प्रणाम गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओ अंकार सतगुरु प्रसाद आदगुरु नमः जुगादगुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः सुभजी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जासव संभरी एक नाम जपते अगंत अनेक वेद प्राण सिमर सोध आखर किन्ने राम नाम एक आखर किनका एक जस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांकी एक दर्श तुआरो नानक उन संग मोहे उदारो सुख मुनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम राव प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै प्रभ के सिमरन दुख जम नसै प्रभ के सिमरन काल परहारै प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरन कछ बिघन न लागै प्रभ के सिमरन अंधन जागै प्रभ के सिमरन भव न व्यापै प्रभ के सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध के संग सर्वनिधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जप तप पूजा प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ के सिमरन दरगह मानी प्रभ के सिमरन होए सुफला प्रभ के सिमरन सुफल फला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते उचा प्रभ के सिमरन उधर हे मुचा प्रभ के सिमरन तिस ना बूझै प्रभ के सिमरन सब के सूझै प्रभ के सिमरन नहीं जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद में समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से धनवंते प्रभ को सिमरे से पथवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बहुमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभ को सिमरे से पर उपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावै प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदर जाग नानक सिमरन पूरे पाग प्रभ के सिमरन कार्य पूरे प्रभ के सिमरन कबू न झूरे प्रभ के सिमरन हर गुण बानी प्रभ के सिमरन सहज समानी प्रभ के सिमरन निचले आसन प्रभ के सिमरन कमल विगासन
प्रभु के सिमरन अनुचुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न

करनाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ अश्वरी। जय मात पिता सत मीत न पाई, मन मुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भ्यान दूध जमदल है, तह केवल नाम संग तेरे चल। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन महे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप परार। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। ला करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अकावै। जे मार गए जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरु परम गत पाई है। छूट नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक बिघन जाय आए सिंगारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जौन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबू न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम मच जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग। जे मार्ग गने जाए न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जे पैणे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तनाल विषाणु। जय महा भ्यान तप्त बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां तिखा मन तुझे यह करक है, तै नानक हर हर अमृत वर्क है। भगत जना की वर्धन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर अवकर साध कुमार। हर जन गय हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नोदान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन कै बिरद भवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जब तब परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कहि नाय वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन के मालिक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। पाठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संकेत तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम संत दुर दर्द दुख लथा। नाम की में मसंतर दिवसै, संत प्रताप दुर्द सब नसै। संत का संग बड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु सस्तर बहु सिमृति, एके सर्व ठडोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कर सस्तर सिमृत विज्ञान।